ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।